हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

एका जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम वाणी गावे, अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी। मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, कोई डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उर्वार न पारी। यो परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी। हर एक को सूत वरते जुग अंतर, सूत खिंचे एकंकारी। रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर

तब आ गया हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी महला पंजवा, कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव, पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना विकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नान।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई।

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबद सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यों चित न लायो नाम ना

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर ना।

केसनो कूड बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके ना, ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए।

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना।

मुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुर पुछे सत

योग तिस जाए। हर गुण गावे गुण संग्रह है ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हो मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार। हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विच्चो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम।

पे रस्म होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएं दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वडभागिया वाह वाह मोह कढाई। वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम फूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरुमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरुमुख अमृत पीवना।

सेवा भगत बनी जाए। हर कै पाणे हर मन वसे, सहजे रस पी जाए। हर कै पाणे सुख पाई, हर लाहा नित ली जाए। हर कै तख्त बहालिए।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हौ मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल फल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, एथे सुख वडियाईयां दरगे मो

गुरमुख प्रगटैया तिथे शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौ।

सब फल पाया, अमृत हर का नाम सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो, महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। पौड़ी, प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई, जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा, आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी, आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर देखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुझ बजाएं वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्याइन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्याइन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा चंग्याई आलक करे बुर्याई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तै सह कक्या मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौ निद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कना तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग, अठसठ तीरथ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी। नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा, आप उपावन हार आपे ही मारदा। सब किछ जाने जान बुझ विचारदा, अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा, जिसनो लाए सच तिसे उदारदा, जिस दै होवे वल सो कदे न हारदा, सदा अपग दीवान है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए, जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ। महला पंजवा। सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे, नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी। सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशया, तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशया, तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल तोए, अमृत साचा नाओ ओथे जापिए।

मन को हुए संतोख पुखा त्रापी है। जिस काट वस्या नाओ तिस बंधन काटी है, गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटी है। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सत गुर सेव जाको कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किच लगदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

रघुराई गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद जो राज दे ता कमन बढ़ाई जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई तू हर पज मन मेरे पद निर्बान बौर ना होए तेरा आवन जान रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई जिस तू देवे तिसे बुझाई जिस तू देवे तिसे बुझाई सब

मले ना लाछे पार मलो, परमलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो, खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परिया नामे चे

हूँ और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्प

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

0: बेसवा जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे,
0: सूकर जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे,
0: प्रेत जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे,
0: बदत तिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसे। गुजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद
1: परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयंग रहाओ इच्छस जमाद पराभयंग जस स्वस्त सुकृत कीर्तंग पाव पूत पाव समभ्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रयो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलू ले राती हर पेन पीनी चोली है। रहा हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है। गुर प्रसाद जन

कब हूँ। सुख आयो कह परम विनाशी, कृपाल हुए प्रभ जमु, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साध संग तज लभु। देव गुणारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अपनाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अंत अडंबर माया के बिरते, तासो प्रीत कटावो, जो अपनो स्वामी सुख माने, तामे शोभा पावो। दासन दास रे दासन की, जन की टहल कमावो, सर्व सुख बढ़ियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचार्यो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतार्यो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता

देवनारी मन सगल स्यानत रही, कर्म कराम हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ। आप नेक पे शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी रही, खिन में खाप थापन हारे कुदरत की मना पही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुम्हारे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल कहे हैं राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुहारी हाते, सोत जागो हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते।

अंध ढोंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित नित हेरे।

तुम्हारा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाश प्राण पत पूरन पवजल उदरन हारा आजवाद।

देवदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर वस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाइए अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाइए रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाइए टिक न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआइए करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाइए संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाइए देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पे बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साज निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवो तब

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाइय मन रूचा खोज असंख्या अनिकित पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंगारी महला पन्नवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को गुरु शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर मृद पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

महला पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह पेथारो हौ कर कराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध और साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत व्यंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ संग न

तन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलसी रे। राज देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

चीत अंत काल संगीन है को ए अचरज है रीत। मन मूरख अजहू ने संगत सिख गए हारियो नीत। नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पन्या।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी, मन सिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हो हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल दिन कम

राज विहागड़ा महला चौथा। अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी, अमृत गुरमत पाए राम। हौ में माया दिखे मेरी जिंदगी, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हया होया मेरी जिंदगी, हर हर नाम से आए राम। हर काज बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन वेदिया मेरी जिंदगी, जो बालक लग दुख खीरे राम। हर दिन शांत ना पा

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी है, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो में विचड़े मेरी जिंदड़ी है, बिख बांधे हो।

गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रव लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुरपूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारण हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़ी ए, सब दुख निवारण हारो राम, सारसना

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण त्रिण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम

हर वेखै सुने रित सब किछ मेरी जिंदड़ी है। सो डरै जिन पाप तवाते राम, जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़ी है। तिन जन सब डर सुत कर।

ए मन तन सब अर्के हा राम, मन तन तन सब प्रभु के रा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

कवन रसना गुण पना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक परम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

बहु खजाना तिन पे हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध ना लोभ ब्यापे जो जन प्रभ सिउ राखिया।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाये प्रभु के आये, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अरतु तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीर्थ।

अलिप्त बंधन रहत करतार किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नानक।

मन पर कीट ना आया सहज ना लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कह तै पन ना करो रहे अंक समाए अन दिन सहसा कदी न चूके बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख

कहे कथे न पाए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा।

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

सत संगत छो मिलाप हुए लिव कटोरी अमृत परी पीती कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

पौड़ी। आपे अस्था तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस दी तेज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा, नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए शब्द सो चित ना लावई, जित सुख वसे मन आए तामस लगा।

छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो। सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो। नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अगे हर्षों केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारह बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे, आपे ही मोह पाए। आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए। जन नानक वडियाई आखे, हर करते की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा, मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पाव

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केकी चक चक आवे जावे श्लोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अगुम अगोचर।

नानक आप अमेयो है गुर कृपा के रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा

तुर खसमे का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बिन्या आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाल सियाना आपे मोनी वर्तदा।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा साहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पा

जिसनो गुरुमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे तेथी जोग न होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार आपे सूखम।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण।

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप बढ़ाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करने

हे मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए करमे पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड़ पागी जिन हर नाम से

का मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहा, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझे आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभु सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभु

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का

तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर तेती

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्त है जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौं बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाने सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की अरदास प्यारे।

तिने तू जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राशा वढ़ंस महला पंजवा।

महला पंजवा कुवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभु कै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना काट काट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वधांस महला पंज

विस्मा रहाओ। खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तने।

प्रसाद मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे जे सो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हों एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हों क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली, बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सो रहा समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जानिया।

सच तुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा हुए।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले दिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए, जिथे जाए बइए भला कहिए, सुरत शब्द लिखाइए काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय है आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त

राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कभो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे।

करो कृपा ले हो जमो बारे जुग जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

बंके लोएन दंतरी साला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की ताला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

सतगुर प्रसाद अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर सिउ निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब

हर राजी जय अन दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर बिचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए

पागे नानक सहजे सेवें गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन जिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत है सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई।

पथ कोई पढ़ पढ़ पंडित वाज बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यों तिस दी वड्याई राम ज्यों तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है केवा पारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साथ शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम, माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, बिख का कीड़ा बिख्यों लागा, बिष्टा माए समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा, माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध ना काई राम, गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा, गुरमुख होवे सोई बूजे, सच सवारन हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर कहना किछु ना जाए, नानक विण ना

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोह खुआई। एह जगत जलता देख के, पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

मेरा सतगुरु पूरा राम, हो मन तन देवा किस काट शरीर आराम, हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु बचा।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हौ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी दुर्सिख नी त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर भी

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

जम कंकर मार बिलारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया,

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंगी तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सुख लियो किया करते हर राम नाम वखाणिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया जन्ना।

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहज जीता,

जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुणे अमोले जगत उदाहरण आए तह बोहे सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन को कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक।

कुर्माने सो प्रधाने हर सोची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सब कुर्बान श्लोक।

आस अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साईं संत ना बाहरा संत मिल

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छेड़ा फल पाये राम। मन इच्छ पाये प्रभ त्याये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा। तज मान मोह विकार

काट काट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई कोई ना सके पहुंचा, आप उपाय आप

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम माज पंथ ना सुजई।

विछड़े जिना दूजे पाए प्यार मनमुख से की दोस्ती थोड़िया दिन चार इस परीति टूटदी विलम न हो गई इस दोस्ती चलन विकार जिना अंदर सच्चे का पौ नाही नाम न करे प्यार नानक तिन स्यों क्या की चाहे दोस्ती जे आप

दाता, हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड़ कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई,

राम नाम लिव लाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा, कर पहला।

रहाओ। त्रै गुण पाप बहु कर्म कमावे, हर रस साध न आया, संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी, जिसनों आप मिलाए, हर रस पी जन सदा कृपा से, विच्चों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग न पाए।

कोई बातें बात रखी हथ अपने जिस पावे किस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगे जाते से सूरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रैगुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जम्मन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा हों मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

पुरुष महला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद आपे आप वर्तना प्यारा आपे आप अपाहो बनजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप कराए साथी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पक्कन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिला हो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवर न कोए सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिज समाहदा प्यारा।

निर्मल सोए आपे कीमत पाएगा प्यारा आपे करे सो होए आपे अल्प न लखिया प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा।

गुरमुख प्रगट होए सूरत मैला चौथा। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था पुथा पै, आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेखे प्रभ आपे। आपे वंटन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे रहाओ। आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप करे प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे। आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सूरत महला चौथा। आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याए सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुरपूरे मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वक्दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया। आपे ही पौ पाइंदा प्यारा, बन बकरी सिरो हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया। आपे ही आप वर्तदा प्यारा, तै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाइंदा प्यारा, साह लेंदे सब लवाया। आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया। सूरत महला चौथा। आपे सृष्ट उपायदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान। मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुर न आवन जान रहाओ। आपे ही गुण वर्तदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बस कराएगा प्यारा, आपे सच निशान। आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराएगा प्यारा, आप दिवावे मान।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जा

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई,

जन नानक अवर न कोई, सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी, जा सबको कीता होसी, जो जो दी सह वडा वडेरा, सो सो ठाकुर अलसी। निर्भव निरंकार पव खंडन, सब सुख नव निर्देशी, हर जियो तेरी दासी राजा, मानस बपड़ा क्या सालाही। क्या तिसका मोहताजा रहाओ, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी पूत गवाई। ऐसा तन दिया सुख दाते, निखुट न कभी जाए।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव इह माने, तो लो मिलन बुराई, आन अपना करत बिचारा, तो लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट चरना, ने बिचरे मोत चसाई, रहाओ, रे मन मुग्द अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे, आप न थापे, साध संगत बुध पाई, साकत का बकना यूं जानो, जैसे पान चुराई, कोट पराद अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो प्रभ, सब लेखा रखो उठाई, सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृहवंता, माया संबंधे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही, रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे। नानक तो गुरु पूरा पेट्यो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेख है सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोगृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर पर साध मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जित पाए दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू धारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिक काटे निमक अरादया, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा न कोई। बड़े पाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट विघ्न लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राख्या रहाओ। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वत्सल दयाला, संता की पैज रखबा आया, आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा पाप सब नाथा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा चौपदे,

ताजियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले इस गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर और

मेरे देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जान्या दूरी रे। हर बेअंत हौ मित्र वर्णो, क्या जाना होय कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देव उपदेशो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक।

से भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर से हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना सेजन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनबाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकड़ी संतन।

मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो क्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम से अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साग लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब पाने किन में अवर किने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों व्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वस्या अविनाशी, ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई। नानक दास पांके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने। जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने। रहे न कछुए छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक दिकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। देख वाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई। काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सूरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित प्राणी। हरखाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये। हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा। जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा। गुण गावत अचूक अविनाशी अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली। आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी। संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी। रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जा के सिमरन हुए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा।

रहाओ सांत पावे होवे मन शीतल अजन नाम कर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल से पवन रुखी सूरत मैला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई

रो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

हारे दर्शन देखन हारे गुरपुरे की अचरज वड्याए नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया।

कीमत कहण न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

पास राख ले हो पाई मेरे को तब आ गए अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खत

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार पै जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना।

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पे दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सोरठ महला पंजवा करती जा चौपदे इक्को अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारों ने पति आया उमरावो आ गए चेरा मिल राजन राम निबेरा अब तूडन कतो न जाई गोविंद फेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लबद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई कह सात न्याय निबेरा ऊहा सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय हम दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चितलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रस।

माई सास सास प्रभ त्याये हर मंगल नानक दाइये। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

हर रसक रसक गुण गाया। सब काटिया जम का पासा, मन पूरन होई आसा, जह देखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाते, निरपौ नाम से आया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, ठाड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपुरे है राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुख।

संग सहाई पाया जह जाये ता सुहेले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जना रे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये जिस देवे पुरख विदाता

पूरी, प्रभ रव रहा पर पूरी, खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म विटो कुर्बाना, गुर के चरण कवल रिद तारे, विघ्न ना लागे तिल का कोई, कारज सगल सवारे, रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए, पतत पुनीत सब हुए, रामदास सरोवर नाते, सब लाते पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाय, साध संग मिल त्याय, मन बाचत फल पाए, गुर पूरा हृदय त्याए, गुर गोपाल आनंदा।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो किर

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

पाए सवाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पांची, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाये, कहने कतन ना पीजे, गोविंद हर पावे पैज रखाये, अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये, ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती, सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा, दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले साथे, जग जीवन नाम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

जन नानक एक से आया सर्व फला पुन पाया। सूरठ महला पंजवा करती जा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरै कीने दाना सब कुशल केम।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम ते।

जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभु आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रत।

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी पग

मिल कुशल सेती कार आए अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कार आए।

हर आराधो हर आराध सबो किच पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म।

प्रभ सतगुर दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

आओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई फल पावे देखी आस न जाए रहाओ कृपा करे जिस प्राण पत दाता कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुर पूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाई है, जित सिमरन दर गए मुख ऊज।

पूरे गुर पहराया, दिन से दुख सवाया, संतो साचे की वडियाई, जिन अचरज सोग बनाए रहाओ। बोले साहिब कै भाणे, बोले साहिब कै भाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बनत बनाए, सोरठ महला पंजवां।

0: गुरपुरै लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सूरठ महला पंजवा हर मंत्र

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाईए दर्शन पेटत होत आनंदा दुख गया हर गाईए। हर रस पीवो भाई नाम जपो नामो आरादो गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

प्रभ ऊंचा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उजल पए दरबारा। सोरठ महला पंजवा। सिमरो अपना साई दिन सरैन सद त्याई, हाथ दे जिन राखे हर नाम महारस चाखे। अपने गुरु ऊपर कुर्बान, पए किरपाल पूरन प्रभदाते, जी होए मेहरवान राव। नानक जन शरणाई जिन पूरन पैज रखाई, सगले दुख मिटाई सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहूं बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भज ले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रस संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया। सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नामा। मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारा निंदिया रस रचियो। राम भगत नह कीनी रहाओ, मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन। तन जोरन कौधाया, अंत संग काहू नहीं दीना। बिरथा आप बंदाया, ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो। न उपजो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे। तै खोजत उद्याना, बहुत जन्म परमत तै हारयो। अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर पज। नानक बात बताई। सोरठ महला नावा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गन काशी उदरी। ताको जस उधारो रहाओ, अटल भयो त्रू जाके सिमरन। अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी। तै काहे बिसराया, जब ही शरण गई कृपा निद। गज ग्रह ते छूटा, महमा नाम कहां लो बरनो। राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा। प्राणी कौन उपाव करे, जाते भगत राम की पावे। जम को त्रास हरे रहाओ, कौन कर्म विद्या कहो कैसी। धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुर जाके सिमरे। पाव सागर को तरी, कल मैं एक नाम कृपा निद। जाहि जपे गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन। एह विद बेद बतावे, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी। जा को कहत गुस्सा।

सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नामा माई मैं केद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई साध संग कब हो नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के बिदरो को ताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुन निमख नाहिए बसावे पर तन पर दा।

जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी, सोरठ मेला नावा। रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ, बारू पीत बनाई रचपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के, उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, पाजले नाम मुरार, कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तोहे पुकार, सोरठ मैला नावा। ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो।

तो संग छार सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन में कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो नाहे मान अपमान।

बैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हृदय शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे। एको चेत मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रजे।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिया पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले तामत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई करम करम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजै पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई

पारी दुर्मत कणे विगूति पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम ना पाए पाई बिन नामे परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुर बिन मग्न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोइए पाई विच्चों निकले तथ जल मछिए जल देखिए पाई ए जग ए हवत गुर बिन परम विगूचिए पाई कट कट देओ अलख एह जग तागो सूत को पाई दैदिस बांधो माए बिन गुर गांठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए एह जग परम फुलाया पाई कहना किछू न जाए गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना छाक न पाई है।

बुर बिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कहे पिर पाए, बिर है बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सब को आखे आपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी देश से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नू जम जोहे ना साके, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत ना आवे, अंतर लोभ सुआओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेजो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ, भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब

वाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसे पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागनी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित ला

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार। से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग। आन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग। सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात। सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात। मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ। गुरमुख हो वैता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साथ समाओ। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए। किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई। नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर। नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ। जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ। किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ। गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ। मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने। दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई। नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार। जी जंत प्रतपाल

प्रम्पो होवे नाथ, मिल संत सवा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुर बचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासिए पाई, हृदय होए प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब पाई, हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई, सर्व कला परपूर। सास गिरास ना विसरे पाई, पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा परपूर। जिना प्रीत न लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पौजल नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया। जिसनो की तो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया। सो आरा दे सास सास प्यारे, राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक। तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे, अनक जोन दुख पाए। साचा साय विसरिया प्यारे, बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचे नाए। तिना पिछे छुटिया प्यारे, जो साची शरणाए।

बिल लाट करें बहुत तेरिया प्यारे, उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे, तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे, जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे, सो मोह काले उठ जाए।

अनमुख टोई नह मिले प्यारे, दरगह मिले सजाए, जो गुर मेर सवारिया प्यारे, तिना पूरी पाए। संजम सह स्याण पा प्यारे, इक ना चली नाल, जो बेमुख गोविंद ते प्यारे, तिन कुल लागे गाल। होंदी वस्त ना जातिया प्यारे, कूड ना चली नाल, सतगुर जिना मिलायुन प्यारे, साचा नाम समाल। सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे, जिसनो नदर करे, आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे, अमृत पूर पूर परे। दुख सागर तिन लंगया प्यारे, पावजल पार परे, जिस पावे तिस मेल लै प्यारे, सेई सदा खरे। समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे, भगता तिसका तान, तिस सरनाई टै पए प्यारे, जे अंतर जामी जान। हालत पलत सवारिया प्यारे, मस्तक सच निशान, सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे, नानक सद कुर्बान। सोरठ महला पंजवा कर दूजा, अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो, निवल पुयंगम सादे, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो, अधिक अंग बुध बादे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका रहाओ। मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिरयो बन माही, तट तीरथ सब तरती प्रम्यो, दुबदा छुटके नाही। मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत धराए, मन की मैल ना उतरे ए विद, जे लख जतन कराए। कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दा दारा, अन बस्तर कूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडौत, खट कर्मा रत रहता, हौ हौ करत बंदन में परया, नह मिलिए ए जुगता। जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए भी कर कर रहया, वड्डी आरजा फिर जन्मे, हर स्यों संग न गया।

तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महल।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाज लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लह जावना जां पकड़ चलाया काल का।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाए नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया से दरगे पेंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर।

तेजा। हर गुण तोट न आवे कीमत कहन न जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड़ पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कहे विचारा गुरमुख हर

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए अंदरों बारों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुकई ना संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार

सब राज सृष्टि काले नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया एक सेवक गुर पास एक

पावली है कितै कामना आई जन लावो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई।

पाए। सतगुर अपने कर वरतदा आपे ले मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

सासिद सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ताडी हर प्रभु खसम के नित गावे हर गुण क्षमता हर कीर्तन।

एक पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जन का। श्लोक महला तीजा, जन्म जन्म की इस मन को मल लागे।

कीरत फल पाये जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना विस

पाए नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीते पाने।

हो कर कर फिरे कसुद्ध मन जो तरकत नारी वद पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लग गया है जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हूँ।

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबे बिगूते देखो निर्ख शरीरा, हर के नाम बिन

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ चूठी माया

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजे।

सिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कर

नहीं, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन तीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इक दमी, मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिस है सरेवो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरिया समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, श्री मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यो चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मेला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार, तना श्री मेला पहला।

संसार तुद पावे अदि परवान। नानक जाने जान सुजान तनाफरी मैला पहला। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पड़े आना। दरगे करिए तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख। नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाओ। कादी पूर बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए। जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप करे सगले कुल तारे। दानस बंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगे का निशान। तनाश्री मेला पहला हर तीजा।

बड़े आई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए,

जय जन सोए जिसनो बख्शे हर देव वडियाई गुर प्रसाद वसैवन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे पांच मन की सो जी पावे मन में मत मैगल मितबारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध सा जय जन कोई अचर करे तौ निर्मल होई गुरमुख ए मन लया सवार हों मैं विचो तजै विकार जो तुर रखियन मेल मिलाए कदे ना विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछाने त्रासी मैला तीजा काचा तन संचे मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार विख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमती पाए काचा तन सुन आवे जाए रहाओ मनमुख भूले सब मरें गवार पर जल डूबे।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान है।

अवर न कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राजना श्री महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे।

हमारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहा जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो, मल पाटी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उधारी, हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरुष अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आज कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मिस कह न सके,

नानक दासन दास करो सब हम हर कथा कथा की। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर फसलियो बिरख प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। त्रासरी मेला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई तल मानो हर हर कथा निराली राव। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवियो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मेला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत आगा हम ले ना सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती हर हर पगत बनी अत सोबा हर जपियो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बना वह पाती नानक जन तुमरी शरणाई हर रात को लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की। हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग बाए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पति ने जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुरु इव हर हर नाम त्याई हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई।
जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी, हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ, हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहुत चिंत विसारी हर नाम उधारी, नानक हर पे है सखाई, तनात्री मेला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी, मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट, इन पान हर नाम मुरारी, मन जपिए हर जगदीश,

तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। त्रासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हों तिनके सब दलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम दियो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। त्रासरी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

नहीं रहा हो, आपे गुरचेला है, आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी, त्रासी मैला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना राव, जय हर सिमरन भया ते उपाद गत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराग मिटे खिन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे मेरा।

ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे तनासरी मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुन चर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना असरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनाश्री मैला पंजवा, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध

जनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई प्राप्त।

करते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न पूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनाश्री मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तक ताकी।

तो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो ममता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला तनासी मैला पन्नवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया ना उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद इहा उहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी नाम लैत कोट अगना से भगत बांछे सब तूरी सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार कराना शीतल शांत मनो सुख पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव। जात ताप तमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, ए बिद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभु सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन चितारिया, पतित पुनीत किए खिल पीतर, सगला रोग बिदारिया रहा, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रब तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागू राम स्यों हेत, सतगुर मेरा

आधार जन का रास पूंजी एक सौण मान दी बाण साचा नानक की प्रगटेक श्री मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत पयाल पू मंडल सगल व्यापे माये जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस

द्रौपदे तिकोंकार सतगुरु प्रसाद। छोड़ जाहे से करे प्राल, कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यो हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा, साथ धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो स्यो रचो मीठा, दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने, जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी, संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के भगत गोविंद, सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, देकर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास, प्रभ दयाल किरपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रात, मिल साध संगत होवत प्रगास, जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगे मिले तिसे ही जाए, सही पगत जे साचे भाने, जम काल ते पए निकाने, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, कट कट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संतरेणार। तनाश्री मैला पंजवा, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साची, चरण शरण नानक दास हर, हर संति ए विद जाति। तनाश्री मैला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंस लाए गुरु राके, संसार सागर में जलन न दीने, किने न दुत्तर पाके, जिनके मन साचा विश्वास, पेक पेक स्वामी की शोभा, अनद सदा उलास रहाओ, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो कह हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याई, ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये, दिनस जाए जो निमक में, सो अलप सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई, सास सास समालता मेरा प्रभ सोई, अचल अच्छेद अपार प्रभ,
ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तनाश्री मैला पंजवा जिन तुम तेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज सुन नेकल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन थाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरदीना जियो। तिस त्यों ना लाई हीत, जा को किश ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय। तना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कर अठवा दो पदे सिको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले।

पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस ना कतहू जात सत गुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी त्रासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा तीनो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे सनासी मैला पंजवा औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राज्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन

राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का काम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुर जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाये दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम सनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार करन हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से पार ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वडे भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरत कोई तीरथ नाया दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर को जानो, के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मैला नामा, साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना, दीन दयाल सदा दुख पंजन, सास्यो मन न लगाना, जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मैला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा उस तक नह जाके, कंचन लोभ समानो, हर्क शोक तेरे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। सनातनी मैला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, होमे मार मिले पगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुरु के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे सात स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरुमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसो रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए पर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल अश्रम कीने मनवा ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सबद सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया।

कहन कहे सब को एके वड आखी है। हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सच है गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई। नानक साथ कह बेनंती मन मान जाए सच सोई। सनासरी मेला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सच्चा कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो। एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो। दो रहा चलाए हुक्म सवाए जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा। भगत सो है दरबार शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने। पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे साचे के व्यापारी। भूख प्यासो आज क्यों दर जाए साजियो। सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो। सच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना। करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी। गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी। तन जोबन आख की छाया बिरद पै दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या। बूढ़ी कर कालियो गुर कह पाए चलो। साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो। हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे। निज कर जाए बह सत पाए अन दिन नाल प्यारे। बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सभाए। नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए। फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो। रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो। गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव भगत करे। माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे। प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण पिरस्यों प्रीत प्यारी। फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो।

दन रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी, सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी, फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई, तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे सा पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरु जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अंदिन विवेक बुद्ध बिकरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत्संगत मिले वड़ पाग ता हर रस आवे जियो। अंदिन रह लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सो दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले। पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे। हुक्म मन सुख पाया। अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुन जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना। कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही। पगलग राम रहे सर नाही।

तेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैस ना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजे कबीरा, रमैये कहा निहोरा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबै बड़ियाई, अंत न काहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनसे कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गनका।

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों कर्त ठगौरी जादव ए फल पाए।

करी जन अपने ऊपर नाम देओ हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कढ़ावो। पाछे बहुर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंडी महसागरा रहाओ।

जमकारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ। दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै। हम बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे, कुल जन मदे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी। अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी, तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी। कर्म कर कपाल मफी तसरी, अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर। शिखर सुनागर नदी के नाथं, कर्म कर खार मफी तसरी। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछौटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को। रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने,
पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे पीपा। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निद पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होए लखावे कन्ना। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का, अनाज मंगो सबसी का, गौ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, सार की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैतसरी महला चौथा, कर पहला चौपदे, इकोंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैतसरी महला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैतसरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ, गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे। मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जैतसरी महला चौथा। सत गुरु साजन पुरख वड पाया,
हर रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ, तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु। मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई। हर निर्मल निर्मल गुण गायबा, तिनके भाग खीर तुर पाए। जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी। सब बिरथा जन्म तिन जाएबा, हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे। हम हर मीठ लगाएबा, जन नानक रेण साध पग मांगे। हर होए दयाल दिवाएबा, जैतरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी। सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई। सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी।

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझै, ताकी निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदत, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधे, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाय, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन शांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैत सरी महला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभु को नीरो, बेकुमार बेअंत बढ़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो, आस्था मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैत सरी महला पंजवा। लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से परम अंधेरा, थान सनंतर सबनी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो मया करा रहाओ, ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अपियो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याज न काई रहाओ, दीसे सब संग रहे अलेपा,
नै व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल आनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ हर

ज्ञान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम

न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, तै मर्दे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर्यो शरणागत, अबे दान प्रभ दीजे जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहा। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो।

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। छंत सुन यार हमारे सज्जन, इक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पूरा।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार।

आए। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सो।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निर्त न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख तरम दूते डिठिया किर्त कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास।

कर रख आसबिए रच भले संजो सुते बनता साजन सेवक दिए प्रभु दे।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबर।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल।

اجو نہ پتے آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اما

ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को परग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमक न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी से जा कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो त्वारो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माल अनेक पोगरस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविद को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहले सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दा संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। कवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सवाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंजान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो, गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन, तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दह विस रव रया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नाश। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन। जी प्राण मान सुख दाता अंतर जान।

सब बेता रिद्धदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पय विस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस दे का ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सरन।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

पासों रुच उपजाई दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस्दिन छुटी न मन की काई कह नानक अब नाहीं अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुत्र

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हींग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

पहला दो पद एक ओहंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ 33 त्यायो नहीं जानियो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उकाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हो में रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विचता तू पंच आप पावे।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटम करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर मुक्त बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जा का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जा के हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी चित सुन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किस कीमत कहीं न जाए नाम के शरण तुम।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, त्यागड़िए मानरा काय।

करम करम दो छपल होए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजना बामना की जल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानियां पढ़े कितेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानियां एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया तपल टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ

गुर प्रसाद नान गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपिया किसको बलिहार, किसके संग तरै संसार। कहो नानक।

थापदा अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए जिन सुरैन जे खुद अरादे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार

गुण तामन तामन करे तो प्यारे तो पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही है रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले खुन तात को लिव लिव को तावे, गुर प्रसादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खरसार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

हरतिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम से आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी जिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो। जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन परानी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया, हर गर्जे पहनाया हर आप गल लाया। जो गुरमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजै, हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जाए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे ना चेतियो जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे, तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए उस परे पसाओ, हौ गुर विटो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा, हौ वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखी है कहो कित बित जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या से सा वद दाने, हौ सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी।

मात पिता सुत बंग जन सुत जातियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना। जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन सुमानो। तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो औसत।

कबीर जी की ओंकार सतगुरु प्रसाद। देव कतेब उत्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना सिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे। हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहा मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तेरा नाम खुंडकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। रहाओ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू बहन।

यार क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती।

दूध करम कुन सुर समायण होई निराश जमावो। जपो साए को नामा अवर निराशन कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित अक्षर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे तुम सर अवर नक

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चातर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना सुनता, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंतर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाये, वाजे बाजो सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत कौ पाये, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब दुलाला, कौन गुरु कहते दीखिया लेवा, कहते मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल तल में

इन विधि चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्तुर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर दौड़ ना होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिप पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत संगत मेलो संग।

संगत हर रंग पाया जन नानक मंथन रंग सुई महला चौथा हर हर करें नित कपट कमावे हिरदा सिद्ध न हुई अंगिन कर्म करें बहु तेरे सुखने सुख न होई ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई तोरे रंग कदे न चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पायो सुआई बाहर देख बहुत चतुराई मनवा जय विस्तावे होमे दया प्यार सबक न चीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो गूंजे सोजन नाम ते आए गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए सुही महला चौथा कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाए हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर शांत बसाई कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई सत्संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा।

हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुगद।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह समाए, हर रस जन चाको जे पाए, तौकत अनत साध लोभाए। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार, हर रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकत कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रघुदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण किठ दे छोड़े, हर नाम देओ लिया मुखलाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अक्षर तीर

किनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिख लिला रहा, तिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याय मन मेरे मन त्याए, हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे, किस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर हिंदक कै पवे चारा।

सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चौ पीढ़ी आप जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिते हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत विद लया ना जाई हर तन संचिय पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होर थे होर तू पाए हर तन किते न पाई हर रत्ने का वापारिया हर रतन तन व्याजे कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाई हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा ए हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जागाती दंड न लगाई साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई हल्के विस्थाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलत साकत हर दरगे टोई ना पाई इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो देख तो हर तन लग चलाई इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो पगत तो परवान किसकी मैं माँ क्या वर्णी है जिसके हृदय वस्या हर पुरुष भगवान गोविंद गुण गाये जी।

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी मैं मां बरना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम कर सोई, ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं कुछ बिन अवर न कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी, विच काश अगम तरी जय, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जय। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने आमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, क्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा, तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुद पे आप सुनाइए, बुरा पला तुद सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाइए। मेरे साहेब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुद सब किस सूझे, तुद पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत कराई, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, देही तू नदर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय, गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर

कर सकिए, अपना कीता किछु ना होवे, जो हर पावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किछ कर हम साके, जो पावे तिवें बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिस्ट सब साजी, कोई सेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने।

माने हुकम तजै अभिमान तैसे राती रलिया माने सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मनमुख दुख पावे दिनों करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहा भरपूर जन नानक गावे देख दूर कोई महला पंजवा गृहवास गुर की ना हो कर किनार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस के आसी तिर को लोड़ी कौन कहा गुण कंत प्यारे सुगर स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया अमृत नाम कंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस्त्र लीना गुर परम चुकाया सबसे ऊंचा मंदिर मेरा सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सर्द अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा कुमक्यो हियो मिलन प्रवताई खोज चरयो देखो प्रह जाई सुन सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंका तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे तिर

विध कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए मन तरसै चरनारे। पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुकराता। कहो नानक प्रभ जनो सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदासे पुरुष खुवाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिखे नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बस करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय, तो किस पाये जो हो ये रे ना। जिसे बुझाए किस नाम लेना, सुही महला पंजवा। कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे। परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता। सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी। सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती। रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी। जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी। मान तान अह

किते न बिसरै काहू बेरा रहाओ। बैखरीद हो दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा। कोट दास जा कै दरबारे निमक निमक वसै तिस नाले। हो किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही मैला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल।

कृपा निधान नानक कौ करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। तुही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेख पेख मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट नहीं अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे। सुही महला पंजवा, तवन काज माया वडे।

जाके सिमरन कच पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोह निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किछ कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुटीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे नी जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करने हार, सगल सिष्ट को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस वेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद दिनोद मंगल सुख।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महा निवासा। सुन मन तन से सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छदाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महाविकराला खिन में दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जपना मुरारी दृष्ट तार लीनो।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित कोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक ना।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

साद गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माजरे पज दिन नित रहने जन्म पदार्थ जीत हर सैनी रहाओ सर्त विकार दो कर चारक राम रतन रिद तिल नहीं तारक परण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी सुही महला पंजवा साध संग तरे पैसागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुर पूरे मिल पाप सजायण रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल साज सुहाओ आठ पैर पार दम त्याई है पूर्व लिप्त हुए ताँ पाई है शरण पे जप दीन दयाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा कर का काज ना जाने रूड़ा चूथे तंदे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा से राम रसायन अंदिन माते वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद नहीं चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याए हर चरण मंची ने ताते करते अस्थिर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी ताते काटी जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई सुही महला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संत।

करण कारण समरथ अपार रहाओ, सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तू ही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग पर

अपना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए पीसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसे तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए कुही मैला पंजवा हर का संत प्राण।

की न्याय पद अभिमान करनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर कोहिरिया दिखना क्रिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देख है खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा वर्ण चेन नाही मुख नाम सारा कहन न जाई खेल।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल परी जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान पान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा।

तै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा, जब कछ ना सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझसे कछु न होई, आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई। रहा गणती गणी न छूटे कतू, काची देहे दे आनी, कृपा करो।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुखला।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे। जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभु कृपाला सतगुर पूरा पाया। सोही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए। दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठे पावा, सास सास ना

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

त्याई गुर प्रसाद पाव करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर सात संग नाव जाते सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग न मीठे बैना रहा सह सिगार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना तिस रूप न रेख्या काई अंत न साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे से तीरतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाए, साचे मन भाया, लाल लता मन मानिया गुर पूरा पाया। हो जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे। मूरख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लावा तारे आनिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। इक नानक की अरदास जो तुद पावसी, मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला, जो आरण लोहा पाए पन कड़ाई है। क्यों साकत जोनी पाए पवे पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है। तू देखे खाप उथाप डर भी ना आई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो जीवी अंधकोर कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला, मनो ना नाम विसार एन स्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक ना मोहे मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहा लिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कह, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कह। हो ना ही तू होवे तुद ही साजिया, आपे थाप थाप शब्द निवाजिया। देही पसम रुलाए न जापी कह गया, आपे रहा समाए सो विस्माद कया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे, हों में विच्चों जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग

काया अंदर संकिच वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर के शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, कां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंशी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिय वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

करके और पवन ये मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ पागी जे

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिले।

मनमुख मन ना पिजई आत्मे ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास सच बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच प्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सो लिव लाए हो मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना बिछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुने भी मिलन जो सतगुरु सेवन, अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर सो केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अंजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सुखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसे मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारने, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाना मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा तला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए खाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए, कृपा करें तो सतगुरु मिले हर हर नाम से आई रहा। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे से आई। जे भुख देहे ताइत ही राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अरादी, जे मार कढे बीत्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोब करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होय सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवै सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर नेफल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। इक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वरसे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

कै संगा मन है व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याज कै वस्त्र दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियानत उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना कुटई, कबू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाई, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे।

ऐसो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व में तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा अष्टपदियां कर दसवां काफी इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जे पुल्ली जे चुकी साई पी तहिं जी काडिया। जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया। हौ ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा। इहो महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया। जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल। इहा पाई मूह दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाप जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल। श्रवणी सुनी कहानियां।

मैं कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहा मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया सतगुरु पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आशा तैसी मनसा पूरे आकर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे, नानक में वरसाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोर बलराम जियो, सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभु करे बलराम जियो। कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई, जांजी ना उन्दर है ने केवल रव रहा तिहु लोई।

बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पाइये बलराम जियो। रहती देख दूर फिर रावी कर सोइये बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए। नानक विछड़ नौ दुख पाए गुरमत पंख समाए। राग सुही महला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। अंदिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तप पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाए, नानक साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

विदात है। तस्पर मार वसी पंचायण अदर करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम, फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम। प्रभ दूर न होई कट कट सोई, किसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई। अमर अडोल अमोल अतारा गुरपुरै सताई है, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सिर ताजा राम, हों विषम कई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो। पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जग पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोग सेती पंच शब्दी आया जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया हौ बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होय रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हौ बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वै वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्लिए जिथे जाए गई।

आखणता को जाइए जे फूलड़ा होई। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाज कहे है दान सन मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे ना कोई। सूरी महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले। स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले।

किया गुर कह मोल कराया आप लड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जीत पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सा।

कीमत होई, अंजन कैसा अंजिए, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जानिए, जे आप जनावे, आप जनावे मार्ग पावे, आपे मनुआ ले वे, कर्म सुकर्म कराए आपे, कीमत कौन अपे वे, तंत मंत पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया, अंजन नाम तिसे ते सूझे, गुर सबदी सच जानिया, साजन होन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही, मन माहे साजन करे रलिया, कर्म कर्म सब आया, अठहठ तीरथ पुन पूजा, नाम साचा भाया, आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया, साजन राग रंगी लड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने, आप उसे मत होची है क्यों राह पिछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे, मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी पर आया, दुखी पर आया।

आप अपुल न फुले, जय जयकार करें तुझ पावे गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही।

सोहेला हर त्याव, गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्याव, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलहारी गुर अपने बिट्टों जिन कारे सब सवारे, हर प्रभु कृपा करे हर जातो, सुख फल हर जन पावो, नानक कह सुनो जन पाई।

तिन जन्म मरण पौ पागा। अंदरों दुर्मत्तु जी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अमदिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्त पासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राखे, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हौ मैं सबद जलाया राम, हौ मैं सबद जलाया, मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आप लखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा वन भाया, नानक भगत सोए दर साचे, जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात सत है, भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी, अम जिन भगत करे दिन राती, कर ही मैं बैरागी, पगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर्शन।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नाम सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगता के कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया। हर जन ऊंचे सब ही ऊंचे, गुर के सब सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया। सुही महला तीजा, सब सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम। हौ मैं सब किलब काटे, साथ रखिया उधारे राम। सच रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर पाव जल करन न होई। सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी, जिन सच में खा लिया सोई। साचे गुण गावे सच।

मन पाया सदा गावे रंग राते, हर के पगत सवाजन निर्मल जुग जुग सधी जाते। साची पगत करें दर जापे, कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी, सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा, जे लोड़े वर बालड़िए, ता गुर चरणी चित लाए राम, सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए, गुर के सह सुभाए, सापन कंठ के आरी, सच संजम सदा है निर्मल, गुर के सब सिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिन

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुहाए राम मिल सबत सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे अंत हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमेय गवारी, खिन खिन थके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार्य आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कैलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम से आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

जा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, सबद रह लिवलाए, वड्डे पाग गुरपूरा पाइए, अंजन नाम से आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हुआ वासा।

अड रहे नाम लो गोविंद नाम मजीठा, थी रहे लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहे।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, नेचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आत वखाना। सुन बावरे क्या कीचै पूरा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमा।

ते पाई साचे सुजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस के त्या गुरपुरा, नान सद बलिहारी।

तू वरदाना कर मेरा मत साई कृपा की जैसा मत दीजै हाथ पैर तू त्याई गर्भ ना की जय रेण हो जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अट गहर गंभीरा तुम फिर हम बोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमिष प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे।

कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए तिस छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग सुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली कर पार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई ऐन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूह है वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूह वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आइए मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियों ने हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार सुहै वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार सतगुरु मिले सुहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन
सेवन साई आपना नित उठ संवालन। महला तीजा कंसा नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख कर तै लिखिया नावे जेवड होर दात नाही किस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार चलन सार न जानी काज सवारन हार। महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा बब्बा चक्की जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले।

जाने सोई आपे शिष्ट उपायन आपे सुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई। श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निबिव्या नानक एहो पटंतरा तित दीदान गया। महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर

आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग सिउ होमे तिसना मार ममता निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप खड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्तक लहो मजूरिया मन मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बिबे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रव रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुग गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर श्लोक महला पहला नानक एवपन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवही कितनी लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सबद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर करयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या दो पा चढ़िए सहोर बहर धोती तू मुड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदै लाया इक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया दै दिस ए मन पाऊदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ पार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हों में विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन सब वरते आपे श्लोक महला पहला चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौलिए पीसाहू स्यों पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कत्तर कछिए कूड़ा पैनन मान महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार लग्या फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नाम गुण गावे गुर के सब सलाइए।

रही महला दूजा जा सुख पासर आवे हो दुख भी संभाले होए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख कर

सूही कबीर जी, हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन भी जाए, पर गए बग बैठे आए, रहा काचे करवे रहना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, त्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो, ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक समाया, बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, रहा तब लग प्राणी तिसे सरे हो, जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा, जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले, मन जिन ताले पासा, जो जन जान कजे अवगत को, तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे, पाल जो जाने पासा। सूही ललित कबीर जियो, एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला, सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी, रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही, बोगस काला ले ही, बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम न काई, संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई, रहो दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन इकेला, दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहाट चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने, सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई, यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुतंग सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा, कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सदै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, इको ओंकार सतगुर प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण कोई पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा लो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सर्वर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जा।

मन बेदया दयाल से थी मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध।

शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार ऊंदी कामन कामने आर राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया ठाक रहे मन साचे पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम फुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह ना सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहस्यों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोले आ जाए दूजा होए कौन सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा।

रहा हो, आप सराफ कसवती लाए, आपके पर के आप जलाए, आपके तोले पूरा हुए, आपके जाने को सोए, माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए, आपके लिव काट है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे, बिलावल महलाती जा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुर पाए, अंदिन लागे सहत्याना रहा, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव क्याना, आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिने कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना, कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा, इकना कर मैं देव आई, इक परम पवे अभिमाना, बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरे, देखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना, सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा रहाओ, चौह जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है, कल में की रथ हर नामा, जुग जुग आपको अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हों में माया शब्द जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसर वेख है बहु न मरे न जम पेख है कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहस्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम से आई जह देखा तैरिया समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रव अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करे सरना प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरुष अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाइये होर त्यागो निफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जतिये वड्डे करम्मा नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सम्मा कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे
जो संग काफत लोह तरा साकत नर होची मत मद्दम जिन हर हर सेव ना करा ते नर पाघीन दोचारी होई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे थे कल जुग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। रहा काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार जम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे सा हो वै जे बात हो वै नहीं अपना पला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल मेला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे धर्म राय की काम चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो केली बलद पहंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नाम किस पगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड माया सर्प पुयंगा, हौ में पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहां होए कृपाल तो गुरु मिलावे, हौ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया किस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनग रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आज समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, करत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए, रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने उठे, सब सुख पाए सतगुरु टूटे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रम मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभु बसे, प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान पा बिरसियां प्यारे, राखन को तुम एक, रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुर देव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा, वड पागी से पाड़ी है प्यारे, संत संगत जिना वासो, अमृत नाम अरादी है निर्मल, मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटी है प्यारे, चूके जम की काने,
तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारु पारे, नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला कन्या दिखे बंसी का त्याग रि सकिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी ना होत जियो। मान महक ना सकती पाई सादा दासी कियो, नानक से दा शोभा बनते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदोरी चित क्रम सकिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सकिए, अंत तज जावत माया। रस पोगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वड़ पागणी सकिए, संता संग समाये कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाये कहे जन्म ना मरण ना आन जाना, नेचल सरनी पाये प्रेम बिचो ना मोह व्यापे, नानक हर एक ते आई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रकड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सब ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा। आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा। पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

हाँ, बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन।

तुम पे कब सोगा मेरे आंगन रहाओ, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वडपागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभु कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा।

पूरी पई सिमर सिमर विदाता। सात संग नाम रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया। बिलावल महला पंजवा। सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सातक नर थीवे। राम नाम हुआ रखवाड़ा, चक मारो सातक बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फाक गले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा। कर चौथा दो पदे

रहाओ। ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुरु दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकत कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुरु सदगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ पाप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विखम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। कम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, वड्डी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वंत्रण त्रिभान हरया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल। रहा साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुणगान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई। नानक गुरु पूरे शरण आई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुरु कर दीने अस्थिर कर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की। तिस आगे ही मारे कृपार, नानक दास ता की शरणाई। जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग। आए बसो पर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊंट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना, ए पुर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख, पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु, कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभु, ताके सब दास। सदा सदा वडियाया, नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यो बालू कर बार, बिन सत बार ना ला गई। ज्यो कागद बूंदार,
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्द तेरा पार जम गुण लि तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित कसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाये कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा निर्भ हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे।

सुनो आप सुनो किस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आज को ते गणित नेता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुणीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ। रूप तूप सोगंधता का पर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था करे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोड़ते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत। नेकल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रभ ते खतनेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया सात संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी। जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी, तन मन अतनो जियरा फिर हों वारी। रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अकबारी। निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, तम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छट जाए। तुमरी कृपा से छूटी है दिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

क्यों बिसरे प्रभु मने ते जिसके गुण एह प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया खे रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे छोड़ परपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एह कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे दास दासन को दासरा नानक कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण तास जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है करन हार जो कर रहा साई बड़े आई गुरपुर उपदेशया सुख खसम जाए चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता न बिन सह में छोड़ जाए।

कपट ते कई शांत पर सब पाप ना थे। अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे, ओए हमारे साजना हम उनकी देन। जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, वस्त संग हर साध के पूरन आसाए। कदन से तिल लोक के पाए सुख थान,

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरह नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांस तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साज संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभु जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाय। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ क्रम मोह की अपने प्रभु पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभु के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभु पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरपुरै कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभु त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभू ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे कह परमा, सुत पाई आनंद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथे अब समाद की अमृत तृप्ता स्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आस

पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको कहो नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जब तक संजम तुम खंडे जम से दुख डांड, सिमरे ना ही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस्तीना तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार निश्चित वते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया। जीव किया अथवा मोया।

कृपा करे काम को काढ़े, कीवी से हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभु की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ, बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर, सो अंतर सो बाहर।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहा, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जम जपे अंगन सब जागे, तंत मंत नह जोई तित चाख न लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन

हारे तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नान की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव ऊंच अपार अगणित हर सब जीव जिस हाथ नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा राजा होए कृपाल मार्ग संत बता

आप जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगत भयो संसार में फिरते तय नाम नानक के शरणागति कट कट सब जान बिलावल मेला तनिमा। रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत वद प्रताप अचरज रूप हर की नीदात गुरु गोविंद कृपा करी।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दियाए।

मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोष हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेक नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राण।

दात आख पहर गुण गावत प्रभु काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपत अघाये पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर

गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिनसे, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार, सदगुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारा संसार, रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेख्यो, कह न जाए वड्याई, मगन पे उहां संग माचे, ओत पोत लपटाई, आल जाल नहीं कछु जंजारा, अहं बुद्ध नहीं पोरा, ऊंचन ऊंच बीच ना खींचा, हों तेरा तू मोरा, एक अंकार एक पसारा, एक कै अपर अपारा, एक विस्थीरन एक संपूरन, एक कै प्राण धारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है, जासियों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मुहावत है, रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है, त्रिन को मंदर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है, पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है, जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली, रहाओ सहल समायो गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली, रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहे हो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई, सत संतोष दया कर्म सुच संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई, बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रोमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई, क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ, जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहे सहाई, शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई, बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमक जताई है, अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है, रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है, बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो, अवकाज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे, पूर न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी, बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता, हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

आई जो कालर पीत गिरी है रहाओ, जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पैर चितव नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया, हर जन सो बाद उठरी है, नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे, होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काडे बहां फरे। बिलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर चीना, तय अनंदा मिटे अंदेसे, सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब परिश्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहो न मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पा।

महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख न व्याप है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पाले हो निधान जन्म मरण की कटिए फांसी साची दरगह का निशान जो तुम करो सोई फल मानो मन से छूटे सगल गुमान कहो नानक ताकी शरण आई जाका किया सगल जहान बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित किस रसना का मोल किस नाही रहा कुल समूह उदरे छिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पर आही संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बसे साज कै संगा रहाओ खिल में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीच तो कहे रंगा कभू न बिसरहिए मोरे ते नानक दास एही दान मंगा बिलावल महला पंजवा अचुत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्थ रखो हर आगे सर्व जिला का है प्रतपाल रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को किसनो लगे न ताची बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्व सो संत जना तन माल नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिलेरवाल बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भय साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास कहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश है तुह पदार्थ बड काज नहे कर कृपा पूरन प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण रात सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे सुलही होए मुआ ना पात रहा काट कुठार खसम सिर काटया छिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चित

आपे आप वर्त स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राख प्रभ मेरे को वड़ प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

पाप पाप से राखे आप, शीतल पै गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात रहो, कर कृपा हस्त प्रभु जी ने, जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।

दोवें थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे विसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभू ना हो वो दृष्ट गोचर, जीते संग बसे।

करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जाते नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा पन पन जोबन चलत गया राम नाम का पदन ना कीनो परत विकार निष्फोर पया रहा अनेक प्रकार भोजन रित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया।

सांत सहज अनंत गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगुण प्रभ कछ ना विचार्यो, कर कृपा अपना कर लिया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरे हर।

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

Hi, Chini. अनुक भगत अनुक जन तारे सुमिरहे अनुक मुनि अंगुले टिक निरकन तन पायो प्रभु नानक अनुक

उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक कह हर ला है अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जान।

कहां पे तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग ने फल तुह मानो जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे। कहो नानक ए विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। बिलावल मेला नामा जा में पदन राम को नाही। तेहि नर जन्म अकार खोया यह राखो मन माही राव। तीर्थ करे व्रत फुन राखे ने मनुआ बस जा को। नेफल कर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं जा को।

सब कोई कत कत बात करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहे साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट ब्या

नाटशाला नाम विसार माया मद किया बिन गुरु भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्दव मंजारा पशु मलेच नीच चंदाला गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये बंधन बांधिया।

फल किसका तन मन अर्पै है एहो जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए बिलावल मेला की जा अष्टपदी कर दसवां।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तहनामी।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरु

प्रसादी मैं अकथ कथैया। मनमुख माया मोह व्यापे यू मन कृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुरु शब्द बुझैया। यू मन नाचे सतगुर आ गए अनहद शब्द

आसा आस करे नहीं बूझे, गुर के शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होआ, मन देह दिस चल चल गवन करैया। प्रभवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सुखे बहु तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवे, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज,

मन चैया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। खिमा सिदार करे प्रभु खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभु मेरा हम तिस आगे जियो कट।

नैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले मैं कुछ आ गए सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हौ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हौ किस वितों बल बल कुम गैया

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख पर मैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बहां पकड़ नानक।

पंचपूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम पूखे मोह प्यासे इक रस्ता के सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर साथ।

तिस में मनुआ रेहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाव नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

साथ खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड दया लिवलाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुवाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मने अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखे, कोई न मिटे तेरे लेखे, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दै क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की तुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक सिती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुवार, सिती वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए, बिलावल मेला पहला संत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब चिगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया तन पाए पगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया नानक मुंद नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं पगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिय सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर के पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो, ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला। मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गतो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे देख पवनी हठ न जाना, नानका सच गह रहे, पिंगड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोमड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार विजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक
गुड़ शब्द चगरन देरो। संत बिरावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम। गुरपुख है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम। वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम। हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम। निमामिणिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम। गुरमुख आप दुआया नित हर हर जाते राम। मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रातें राम। जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रातें राम। मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम। गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम। जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम। हर हर हर हर रात प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम। भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम। बिन हर नाम ना जीन दे ज्यो जल बिन मीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग। गुर पूरे खा लिया नानक हर लिवलाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम। गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम। हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम। गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम। जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुगध मिलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम। जन नानक नाम सलाय।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर रतन विसारा राम।

एक चित एक मन प्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह सा।

मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सभा जी राम प्रभ कर आयरा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे बिन श्रेय उमा तै रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत परे भंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज मन पागी है पगत सगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाल दिखावे। ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे। गृह बने तीर वर्त पूजा बात काटे जोनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंधले तोहनी। मोहे अनाथ प्रे अनाथ जो जानो क्यों रखो चतुराई मोहे नाहे री जावो कै मुखो। मैं चतुर सुगर सुजान।

अवसर है। मोहि तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी। जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते। चीत चित वो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चर है। नानक पयम तय प्रिय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सगला बनहरा। हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना। नवल नव तन नाव बाला कमल रस

सुंदर सांस दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम ब्रह्म मोही दुख न जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

हर उत्तम हर प्रब गाव्या कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उचरे हर हर हर उर लाग सब तन मन हरिया होया मन खिलया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन जान चराग जन नानक जीवे देख हर एक निमक करी।

राग नाद छोड़ हर सेवी है ता दरगे पाई है मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है चूपे मन अभिमान पौड़ी। तू हर प्रभु आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा। दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख थाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए। महला तीजा। बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सो लिलाए जन्म मरण दुख कटिया।

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिवलाए। महला तीजा, सतगुरु की सेव ना की किया सबल ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। पौड़ी, सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई।

सच पाए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सचो दैज पकड़िया गुर कहते सुभाए। नानक जिन अंदर सच है, से जन छते ना किसे दो छुपाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे, मानस ते देवते पे सच्ची पगत जिस दे, हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे। नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे पौड़ी, गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हृदय पाई। निंदक दुख वडियाई वेख न सकन, ओना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी, जा सके स्यों बने आई। ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा, रुद ए आशा दूजे पाव की, जो मोय माया चित लाए। हर सुख पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए। कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले, सो हर हर नाम की आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन भाई।

जिस बख्शे करतार नानक गुर प्रसादी यो मन ता तरे जा छोड़े अहंकार सासा मनसा मारे निराश होए गुर सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी पूरियारा के मोख टिकिए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग सत गुर पाये जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल शांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए महला तीजा ते मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान

जो कुछ हर करावे सो ओ करे सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के बल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्ट गो लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम लिव लागे। नानक से जे सुख होए अंदरों परम पोता गए। महला तीजा, गुरुमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया। गुरुमुख देखन बोलना नाम जपत सुख पाया। नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार। पनक नानक छो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई। अंदर संसार धूप व्यापे सिर तंदा नित मार। दूजे पाए सूते कबो न जागे माया मोह प्यार। नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार। हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव। किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रात ले वे मुख पक।

हर के नाम के व्यापारी हर भगत है। जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया। गुर प्रसादी नाम मन वसिया, अंगन नाम के आया। दिख्या माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया। आप तरिया कुल उदरे तन जने दी माया, सदा सहज सुख मन वसिया। सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वधाया। पंडित पर परमोनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया। योगी जंगम सन्यासी पुल्ले, जिन गुर पत न पाया। मन मुख दुख ये सदा परम पुल्ले, तिन बिरथा जन्म गवाया। नानक नाम रते।

अमृत बाणी अंदिन हर गुण गाओ निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया जो कुछ क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अपे कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे कैसी बने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे किसका मोह हर चोह कुंडा विकाला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

ने तिस सास गिरास सदा मन वसे जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसे हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना।

तू दे रे कि चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबु जम ले जई है रे मांस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनवंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मार है ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न कब

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फुटे सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी मैं बौरा।

मैं बिगड़ो बिगड़े मत पौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर रामे रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा अजो विकार न छोड़ दई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे करो पौजल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्व्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें लय उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए तूपत सब दिवचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा परम तू को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील कर्म जब भगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया ए लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ दिन सुर्त करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदा

कह कबीर तुम समरस दाते, चार पदार्थ देखना बार। बिलावल डंडा मुंदरा सिंसा आधारी, प्रम कह पाए पवे तेज तारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पज बवरे। राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी, कह कबीर के सो जग जोगी। बिलावल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत ना उपजे जन को, जन कहा करे बेचारे। राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी, किस माया को दृढ़ कर राखो, बांधे आप बचनी। क्या थे की क्या लेवा दई, परपंच झूठ घुमाना, कह कबीर के अंत बिगूते, आया काल निदाना। बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप। रे मन हर पाजे प्रम सजो, जग जीवन राम रहाओ। आवश्यक न दी सही न दी सह जात, जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात। लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार, कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार। बिलावल जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लिव लागी, जीवक सुन समान्या गुर साची जागी। रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई। तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी। आप आपते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नौ निध ताके सहज, सहज जस बोले देव। रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेख है, कुटल गांठ जब खोले देव। बारंबार माया से अटके ले नरजा मन तो ले देव, जे ओ जाए तही सुख पावे, माया तास न चोले देव। कह कबीर मेरा मन।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्रह्मन बैस सूद अर खत्री

तन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे दिखोए। पंडित सूर छत्रपत राजा, तगत बराबर और न कोए, जैसे पुरैन पात रहे जल समीर।

करते हैं ला जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटम सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहा करे ए बकुड़े इनका वाहया कछ न वसाय मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब चढ़ाई जो कुछ आस अब

छिन में चूट दिल सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए। गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित प्याई है, जो छिन में किलित सब करे विनाशा। ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह।

अपनी बिरसा बहु बहुत कदाचा अपनी बिरसा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरसा अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा।

जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना तुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुल उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राख है सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर मैल पावे गुर बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साके है, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बार नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यों त्रिखावंत दिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुछम भाए ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़।

तू लाग पड़े कुटुंबायले, जो पंखी कत्र होए फिर बिछड़े, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध बिन सो।

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुर ते सुजय निरंजन देव रहाओ। जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ पत पर लो निमक मझार। जाकी गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए। आए न जावे ने चलतने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडारे।

मिटय कोट अगमनख जस गाओ, बाल सखाई भगतन को मीत। प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा नाम संग सीनु व्यवहार। नामो ही इस मन का आधार, नामो ही किस कीनी ओट। नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम। मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव, नाम हमारे जी की रास। नामो संगी जत कत जात, नामो ही मन लागा मीठा। जल थल सब में नामो गीता, नामे दरगे।

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमाने को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान। गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय। रहाओ रंक राव जाके एक समान कीट हस्त सगल पुराण। दियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे। जा का अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए। आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार। नाम रंग पगप पहे लाल जग करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन। जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास। से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत। रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे। जाके उपदेश परम पौनस है। जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बाँछ है संसार। कोट पतित जाके संग उधार एक निरंकार जाके नाम आधार। सर्व जिया का जाने पेयो कृपा निधान निरंजन देव। पाल ब्रह्म जब पहे कृपाल

गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहा। फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगती लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुर मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा।

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम, रहाओ राम राम ता

आए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भये जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबसे ऊंच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्टि के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट ले सात पथ कोवे सात जना पग मलमल तोवे पंच फूट जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी सह समाद थान कनंतर एको स्वामी सगल कटा का अंत

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा, गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस संते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, पज अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मन तन निर्मल हो।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौण महला पंजवा। सूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पय वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ अर्घ।

करम तरम इह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर कर बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंचदूत पागे विकराल जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल।

दूसर कोई नाही, काट काट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटै बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़ पागी पाये पुरख अपार, रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल। किसको पोए न सके जमकाल, जग में आया सो परवान। गुरमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद। काम क्रोध मिटे उन्मा।

सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंत मां विचार पंच दूते मंत तो शरणाई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ सिमरत।

दारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तक्षिण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ।

बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही, गौण मैला पंजवा, जा को राखे राखन हार, तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है, काम क्रोध लोभ मोह न पो है, साध संग जपे निरंकार, निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको होत ना है, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पै

राग गौण अष्टपदियां मैला पंजवां कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूरत सफल जा की सेव अंतरजामी पुरख विदाता आठ पैर नाम रंगराता गुरु गोविंद गुरु

सब लोग संतन के मन महा आनंद संत जपे गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पाए सगल स्थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाए पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए सगल पै मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब

फल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए। नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा। कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर कामना आवे।

सतगुर प्रसाद। पूजा बांध किला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूंड में मारियो, हस्त पाग कै चीसा मारे, क्या मूरत कै हो गलिहारे, आए मेरे ठाकुर तुमरा।

कालो सात हथ ना तोड़े तरह ध्यान वहां कह हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोत कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी। ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंदिन ताते जा।

शंख को बिख बिख से संसार कर सीगार बह पखियारी संत की खिटकी फिरे बिचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बो

आगन महापवित तपे तपी सर डोले चीत रहाओ सोहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो तूती साधु कैठाडी दरबार शरण तेरी मोको निस्तार सोहागन है अति सुंदरी पग मेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उर्वार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिट गए फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाई है साधु बिन कैसे अवगत जाई है जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना, गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस हट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार, राव नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ न पतिये परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अतरूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए ना

सोडे अन करे पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड, जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्य बिना न होए सुकाल, तजे अन ना मिले गुपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी।

बसता मुख वेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संवादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पदनामा तरस पव सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा जो बिखई है।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरुमत राम नाम गहो मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा राम।

सोई मुकंद मुकुत का दाता, सोई मुकंद हमरा पुत माता, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ, मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड। जे ओ अषट तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत अर्पण।

अपना बिगार बिराना सांड है, करे निंद बहुजो निहांड है। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी नहला पहला सर्व ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा कह नरहरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जह पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेरे आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार

जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे, किन बिद सागर तरिए जीवतिया नह मरिए, रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे पत जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधिया सत के आसन पुरख रहे, किंते नामा अंत न जानिया तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कह

आप करे जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिए रहाओ दूजा राम करी महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पचोली मंगन कहताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंगड़ा

सेव करे। कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम करी महला पहला, सुन मां छिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे न डोले, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरह सगले कुल पारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, एनस सुन समाज समावे, रहाओ तिथिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए तनवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए दीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए राम कली मेला पहला हम दौलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दयाई गुर पार तारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हम कुछ को बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम एक सिद्ध जिन त्याया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मेला पहला सुरती सुर कर लाये एक कन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा बने।

जन जाओ पांडे पाओ पवे तुत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किछ किया सो किछ करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दर की।

कौन बुझे बिध जाने खुद खुद चलत आप कर चीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिध सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे एन इस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आग पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तै तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदिया दुष्ट जले दुख आ गए गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत खोई गुरमत पगत पावे।

गडिया दिहतारी राम कला निभ पत सारी तारतूती गाडो सिर पार लकड़ी दिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी पुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्द लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

जा कर पहला। सत युग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सत युग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को भी चार। युग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन संसार की।

पंथ छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो, इन विद तत् बिलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहज मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतनी सगल बेगनी, ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी, रहाओ सुर्ग पवित्रा, मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जत कत देखो हर गुनी, मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का ता निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी, राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने, अचरज किस तैन न जाई, बस अगु

करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मिच आपे जाने हर आपे पूर पंगारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक।

सर मेरा अनतराज भोग रसमानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ कीर्तना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्ण काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ना कतू जाता बरना साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा।

जन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम करी मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

बीगा काले तेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खलक त्याग विसूरे सहज आनंद दिखा।

कोई ओढ़ नील कोई सुपेद कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू कोई बांछे पुस्त कोई सुरजिंदू कहो नानक जिन हो।

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन नदी से कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ महिमा जा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर न जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको नाही दुख संताप, लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता ओ अचरज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए बुझ गई कृष्ण निवारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर

उमीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाय होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन तीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक बरन।

संत जने परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाहे हो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन्ही दीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग

आओ कीर्तन आधार, नीचल आसन बेसुमार, दुगना डोले कतहु जावे, गुर प्रसाद को इहु मेल पावे, प्रम पे मोह न माया जाले, सुन समाद प्रभु के पाले, ताका अंत न पारावारे, आपे गुप्त

संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कभू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गंभीर।

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमर

कर पर थापे वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर पगतन को न

जामी राम करी महला पंजवा। जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना। डोलन के चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया। दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी। महापुरुष का संग

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान

सेवा लाए, हर हर भगत राम गुण गाए, बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन, अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ, आए बन्यो।

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय। राम कली मैला पन्नवा।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। रामकली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद।

दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय कर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटक मिटे

पंच बटवारे से मीत कर माने सो कर सेव जित उदरे मीत गुण गोविंद रविया दिन राती साध संग कर मन की प्री

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

माटी को जल बैदिस त्याग ऊपर चरण तले आकाश खट में सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख ना बिसरे।

छिन छिन औद कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे।

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतो।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पग पावे, राम नाम बिन नरक गया, तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया, करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया, हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

जो भी सह सब सह मया आद पुर अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए को रो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एह चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख के ती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हूँ मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कटकट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सस लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

शोध कर पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्त तेहा भगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

जित किंगरी अनहद वाजे हर सुन रह लिव लाए रहाओ। सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई। ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत वजाई। मन दृढ़ कर आसन।

आर न लागे जोगी ना सतले पाए एक तिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन विद कृष्णा खंडी।

हर्षे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेश करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख हो वह सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है।

कहे नानक मुक्त होवे जोगी। साथी रहे समाए राम करी मेला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सत गुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख दे वड्याई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे। काम क्रोध विचों जाई। आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई। तातुर बाजी शब्द निवारे नाम वसे मन आई। यो शरीर सर्वर है संतो स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नामे बिन सजाई। ब्रह्मा

नाम नमन निध पाए, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अदिष्ट लगाई, अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हौं गुरसाला ही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक

नावो गत पत पाए राम कली मैला तीजा हरती पूजा दुलंभ है संतो कहना कछु न जाए संतो गुरुमुख पूरा पाए नामो पूज कराए रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाए हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाए पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाण मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाने संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

संजन मेरा प्रभु अंत सिखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया।

एक पेक करें सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अंदिन पगत करें दिन राती राम नाम उर्धारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन पगत न हुई कभी सह पाए पगत सवार।

अहंकारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जाय मिलिए राम मुरारी अंगिन जागत रहे दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मनवारी वार कुमाई अपने गुरु बलिहारी माया मोह बिस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए सोई जागे गुरु के शब्द विचारी नानक से।

आए आपके साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर तंदै लाए किसै सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाए अपना आप आप उपाय अलख ना लखना जाए आपके मार्ग वाले आप

सो जन सूझे जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्व थाई।

किन्ही मून औ तू सदाया। कोई कह तो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्ही कया हो तीर्थवासी कोई अन पज पया उदासी। किन्ही पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कया मैं कुल्हे

मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित। कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी तृष्णा महा शीतलाया। रामकली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया। उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। राखन हार समार जन

आए ऐसे राखनहार दयाल। जब तक देखो तुम प्रतपाल रहा हो जल पीवत ज्यो तुखान तंत तन बिग सह गृह आवत संत लोभी का तन प्राण आधार।

संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे मैं अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के

गुर साचे लाए तराई अपने जी पे आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच कर्म का बेड़ा बांधिया पर जल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार भी पाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

निराला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कट आवे कट जाई संतो आप जुगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली मैला पंजवा मन बच क्रम

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रब अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

कर्म कमाए सहसे जियो मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले कुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले आप छद सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सन्मुख होए जो को गुर के दो मुख होवे।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप वखानी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन कहे रवानी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागे।

सब रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सुर सकत आप उपाय कह करता, आपके हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए। तोड़े बंधन हो वह मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वह एक कस्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपसे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तैसार न जानी गुरु बाजो तत्तैसार न जानी। तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया, जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए, हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने, हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कीते जिच्चे हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुसना लागे आए, एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुरु चरण लागे दिन सभागे आपना फिर जापे, अनहत बाणी गुरु सब ज्ञान।

जग में आए चाहे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीर आजा तू जग में आया। जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रों मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया। यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समानी, सच अलख विडाणी ताकि गत कहीं न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इतना दसवां द्वार दिखाया, कहे अनेक रूप नाव नवनिज किसका अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहेला साचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच प्यावे। सचो प्यावे जात रूपावे गुरमुख जिना बुझावे, एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा

गुरु जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो।

कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द विचारा।

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याये सब किच पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

आखिन ना विसारिय। राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय। उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम।

माता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभु मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुरु चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो।

भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामे कुल समूहा सब तरे त्रै रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नान।

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए छंत। रुत सर्द अडंबरो असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर छंत रुत सिसियर सी।

मन बांचत फल पाया हर नानक नाम भने चंत। हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो। सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो। ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत।

तिन बलिहारणे हर जप उतरे तीर छंत चरण बिराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश रे।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतर साचा।

गर्ब गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुरविचार अगम अगोचर।

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कह न जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पियंत

विलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

हर वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजै देखु लै एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछता है ना तिस ज्ञान ना त्यान है ना तिस धर्म त्यान विणना में निरपो कहा क्या जाना अभिमान थाक रही किव अपना हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगुले।

वन तेन तू डत फिर रही, मन मैं करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए नानक।

दी हर पाई है मत को परम कुला है सोसा हो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर सचियारी सच संचिया।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो।

आहारो खाय औदू बोले ज्ञाने तीरथ नाये सुख फल पाये मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिदसाई।

आवे पर कर चित ना डोलाई बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत बिचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुल चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी।

एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

आज कमावे गत मित सब दे पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया। अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाये तप निरंजन सहज लह। नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह। हुकम विस्माद हुकम पछाने जी जुगत सत जाने सोई। आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई। अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया। सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया। एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया। सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरे ता सब किछ सूझे।

गुरुमुख तरती साजै साजी, तिस में ओ पत खपत सोबाजी। गुरु कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए। साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै। गुरुमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरुमुख पाव जल तरिए सच शुद्धि। गुरुमुख सर अपसर विद जाने, गुरुमुख परवित नरवित पछाणे। गुरुमुख तारे पार उतारे, नानक गुरुमुख शब्द।

जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार। गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए। गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए। गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान। गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

वै कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो एह रावण पेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहन तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगे पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहत्यान गुरमुख दरगे सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख होम में शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाले एक कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाये सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रह आवाहन इत उत किसको जान समावे कवन त्यान मन मन है समावे हौ हौ मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाये खाये सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पाने सच पैराता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवै कर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जोत जो काल संगारे बोले बाणी नानक बिचारे शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटे अंधिया।

तत मिले मन माने दूजा जाए इकत कार्याने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से।

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच निव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्...

पूजै जा आपे अलख लखाए नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित पोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अराध्या अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म

जियो आत्म सुख तारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो शब्द औदू ताको चूके मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख हो मैं विचों खोवे तो नानक सहज समावे इहो मन ने चल हृदय वसियले गुरमुख मूल पछाण रहे नाभि पवन कर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लहे सो शब्द निरंतर निज कर आछे त्रिभवन जोत तो शब्द लहे खावे दुख भूख साचे की साचे ही तृप्तास रहे अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानक आखे सच सुबाखे सच रपे रंग कब हूं ना जावे जा इहो हिरदा दे ना होती तो मन कैठे रहता ना बिकमल अस्तंभ ना हो तो ता पवन कवन कर कहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रकत बिंद की मड़ी

जोग कदे न होवे, देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजे बिरला बूजे कोए, गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणे, गुरमुख नानक एको जाने। बिन सतगुर सेवे जोग न होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

कहलाती जा। सतगुरु सहजे दा खेत है जिसनो लाए पाओ, नाउ बीजे नाउ उगवे नामे रह समाए। हौ मैं एहो बीज है सहसा गया विलाए, ना किछ बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए। अम्बे से ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी नाहे, जिस वे खाले सो वेख है जिस वस्या मन माहे। महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख पाए।

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई।

पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाई जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले। सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगे पावे मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरुमति कर चानना आनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वन त्रिण, सब किच आपे आप है गुरुमुख सदा हर पण। सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, श्लोक महला तीजा अभ्याग।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत के नाथियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा।

सच्चाई सब समाय पौड़ी। आप अलिपत पदार हैं होर तंदै सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंक फिरे, ना सत मूंड मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तछावे दुख सहे, ना सत हक

पछाता बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता मन मुखार मंदर की साहब न जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वरदा।

पूजा जप तप सब किछ मन्या अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्या बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जाए। बजर कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जाए। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जाए। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जाए। सब में एक वर्त दा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा सब किस सच्चो सच

काम की चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंग न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

सेवी सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन एक आपे उज्जर पायन एक पगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत, मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजोग।

तम संत्या नाम अपार अठे तैलु मने न हुकम अपार। जन नानक मंगे दान।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

आवे, अंदर मैल ना उतरे हो मैं, फिर आवे जावे, नींद भी आप्या काम संतापया, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

जिसने मस्तक पाद तुर लिखिया सो सिख गुरु कह आवे आप तरे आप तंग सब तारे सबा सृष्ट छावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह नित

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे की ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ नगरी विच दो कड्डे, ता उगड़ आया लोहा, बहुतेरी थाई रलाए रलाए दिता, उगड़िया पर्दा।

आपके वैद आप नारायण हैं। ए वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण है। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा।

ना पौड़ी, जिस कैमस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

सुध कर, मान महता तेज अपना आप जार, सर्व कला परपूर दिसहजत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा, छकड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये।

जीव दै दे गुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दै नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दै लैने करे उन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दै।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई, साधु हुए सो भगत पछाने।

आगे जी मुख भेद गायत्री निपसैसो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जहाँ कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ धर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जर हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा।

करम दया कर बारी। पवन काज सृजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन इह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

पेदार जागत मुसीहत हौरे पाई, निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार, नालियेर फल सेबर पाका मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल।

आकाश मदे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कलाचित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

पियले। वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो। शब्द अतीत

सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो, तीर्थ देख ना जल में पैसो, जी जंत ना सतावोगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे, किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में, एक किन पल दूर करे। वड पागी हर नाम के आवे, हर के पगत हरे, इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस

पावै। जन नानक के प्रभु वद में नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभधारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुड़ने।

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह।

हर अकप कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर पग पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू त्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी री जावे सोई जन सोई निज पगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमख ना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महा मंगल रूप किछ आन नहीं दिस

माता पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु कहे नानक जस दावत ठाकुर गुनी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन कै संग बस्यो मन ते नाहि विसारियो रहाओ बरन चेन नाहि किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा विखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

समारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे। हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा।

रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंदर साध दिसारे गुरमत राम नाम तन

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्तारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाय, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुब जाको, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम कंकर मार बिदारे।

किचना समारे। जब कर मंदर आग लगानी कड कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण।

मन सरदा कर हर तारे, मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे, जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखे ब्रह्म पसारे, एक पुरुष एक नदरी आवे, सब एका नदर निहारे, हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाए, सब चेरी जगत समारे, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारे, अंतर वास बहुत मुस्काए, ब्रह्म फूला मृग सिंहारे, बन बन टूट

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे

नित पानी चोल चुलारे मिल सत्संगत परम पद पाया पद माखुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुरु अलख लखारे नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर

विचारे निज फल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे।

पचै पतंग मृग त्रिंग कुंचर मीन इक इंद्री पकर संगारे पंच पूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावो सत्संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचे जब उन वे कन कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल विस्तारे जो जो निवे साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़े बिखारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले पर उपकारे संत संत मिले मन बिजसे जो जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हलक है हलके सब।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचनाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़या हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साधे आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता। रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर शरणाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब किल विच पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्रभु मस्तके तुरली खिया गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया हर मिलियो मंगल गायो, पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिया जो लोन जलाया गलायो, मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो जन नानक नाम समायो, माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा, रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांत आई हर उर्धार्यो वड पागा, मन मुख रंग कसुंब है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे दंड धर्म राय का लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूरी जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे हर रंग ना लहे सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर सोबा।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचत

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे किरखें बरस मेघ, जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक परे।

हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत दीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। एक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार।

तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पैने कामा कोठा कुर को दासारे।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

माए सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो साल आही है जिन कर देख्या खेल संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई मूर

न कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरना।